0: क्या यार आवाज, बल्ले बल्ले बल्ले, जी कर तो सुनी जाओ यार। जो मिठास है, सुरां जड़ियां लाइया, मुर्कियां जड़ियां लाइया यार। साबर कोटी साहब मैं कहना दिल ही जित लिया। 4552 हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: हेलो नवी,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: सत
0: श्री अकाल जी।
1: हाँ जी, मेनू ना फोन चाहिए क्रिसमस लाइट कोई लगांदा होवे।
0: क्रिसमस लाइटा, हाँ जी, दे देने हैं जी।
1: हाँ जी दसो।
0: क्रिसमस ता दूर है जी, पहला याद कर ली क्रिसमस।
1: हाँ, हाँ जी, वो फिर विंटर टाइम आंदे नहीं।
0: हाँ नहीं, वधिया गल है, हुण कर लेना चाहिए काम। नंबर है जी 416।
1: हाँ जी, ओके।
0: 356 48
1: 4870 7-0, ओके, थैंक यू बेटा।
0: कोई गल नहीं जी, नो प्रॉब्लम। सो जरूर, एंड किसी नु भी कोई इलेक्ट्रिकल काम दी लोड है तो 416-356-4870 ते सारे कॉल कर सकते हैं। ग्रोसरी करनी है, फ्रेश फूड सेंटर 12570 कैनेडी रोड, कैनेडी ते डूगल दे कॉर्नर ते, कैनेडी ते मेफिर दे बिल्कुल नाल। फ्रेश फूड सेंटर ते एक बार तुसी जरूर पहुंचना। हार्डवुड जॉइंट, थोनू हार्डवुड लैमिनेट वाइनल टाइला कोई भी फ्लोरिंग दा समान चाहिदा, हार्डवुड जॉइंट टोरबम एंड स्टील्स दे कॉर्नर ते। ते मैं कहना क्या सर्विस है, क्या वैरायटी है, तुसी देख के कहोगे आ भी लै लिये, वह भी लै लिये। एक ना सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ते तुसी जरूर पहुंचना। सिंपली इंडियन, सिंपली द बेस्ट। सिंपली इंडियन ते जाओ, अपने मनपसंद दा खाना पीना खाओ। इन्होंने एक तो जलेबी एक पाउंड फ्री लाई है, मोहीटोज ते होर बहुत सारे ड्रिंक बाय वन गेट वन फ्री लाए ने। आने वाली दिवाली ते बहुत वड्डे टेंट मठियाइया 150 तो वध गिव अवेज, लाइव डीजे, पंजाबी लहरा लाइव वन लोकेशन होगा। सो जरूर तुसी याद रखो, सिंपली इंडियन 275 गार्डन ब्रुक ट्रेल, गार्डन ब्रुक कैसलमोर, 85 माउंट पेलियर स्ट्रीट, मिसागा फाइनेंशियल, एंड 15 फेंडर वे, बवेड एंड शिंक्यूजी। सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट थोड़े लिए हाजिर है। प्रदीपा जी भी थोड़े लिए अवेलेबल, जे तुसी फ्रिज स्टोव डिशवाशर की कोई रिपेयर करवानी है, कोई अपलायंसिज थोड़े पुराने ने चंगी तरह चल नहीं रहे, अपलायंसिज नूं भज्जण ला देंगे। 647-622-3203 पैशन रूफिंग दे गुरलाल भाजी, नवी रूफ लगन वाली है, रूफ की रिपेयर होने वाली है, पैशन रूफिंग नूं तुसी फोन करना है। गुरलाल भाई जी हुणे फुली इंश्योर्ड कंपनी है, बड़ा खूबसूरत काम करते ने, एंड नाल वारंटी भी थोड़ा मिल रही है। सो पैशन रूफिंग 647-919-9913 नंबर है, 647-919-9413 नंबर है। गाना लाइए दो बोल यार, निर्वैर पन्नू दी नवी एल्बम चों।

0: के तेरा नाम मैं सजते करता रहता सा। हाँ। तू मेरा नाम लिख के कदे मिटाउंदी सी के नहीं।
1: क्या बात है। 905-673-3337 देवी देवी लाइव आ रहा ब्रैम्पटन दे विच मैं तां सुना रहा।
0: ओ दाने दाने दाने दाना दाना दाना साडा इको दाना कईयां बराबर।

0: www.smartfinancialgroup.com
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है सड़कां तो पार्कां तक ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक क्राइम तो करप्शन तक चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनदा है।

0: 905-553-9054-5559-55-33
1: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है, पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहीआं ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर। आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस दे ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 एंड 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड फॉर बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।

0: Aldi Poncho, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
2: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
3: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
4: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है।

0: जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।
1: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, इतनिया तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
2: निर्बल बाबे ने क्या सी कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा तो हो ही नहीं।
3: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
0: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
4: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप है फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: भाई ये ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां।
3: ओए इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखू नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
4: जी हां, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड़ है तो तुहाडी पसंद

0: 619-6000.
1: ब्रैम्पटन वासियों रीजनल काउंसलर ले वार्ड 2 अते वार्ड 6 तो प्रेमपाल गिल चौंड मैदान विचान
2: प्रेमपाल गिल दे कैंपेन ते मुख्य मुद्दों विच पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी अफोर्डेबिलिटी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लोकल जॉब्स अते बिजनेस ग्रोथ लोअर प्रॉपर्टी टैक्स सिटी हॉल विच ट्रांसपेरेंसी ट्रैफिक ट्रांजिट पॉसिबल स्पेंडिंग अते पावर दा मिसयूज रोकना शामिल है
1: वोटिंग डेट 26 अक्टूबर 2026 एडवांस वोटिंग दिया तरीका नोट कर लो 9 10 11 16 अते 17 अक्टूबर फॉर मोर इंफॉर्मेशन विजिट premgil.ca
2: by Prempal Gill.

5 Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 MacWin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 9054569900

0: AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदिया सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दिया ते दो अमृतसर दिया मिल जानगियां
1: बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दिया चाहिदिया ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32 55 80
4: 9054508 9054508 905-450-2828
3: 905-450-2828
4: अठाई अठाई

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: The wait is finally over. Gordy Kumin of RE/MAX Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at RE/MAX Gold Realty to book your unit today.
2: ताजिया सब्जियां फ्रेश फल फ्रूट वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मां। रोज दी ग्रोसरी होवे चावल दालां आटा देसी घिओ मसाले टी स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस वैरायटी क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मां एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते 6141 मेफील्ड रोड यूनिट।
3: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है सड़कां तो पार्कां तक ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनदा है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल सिटी कौंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 और 10
4: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
5: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
6: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
5: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
6: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
7: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
6: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
7: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
6: 416-509-1509
7: और विजिट insuranceforyou.ca।
8: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
9: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा।
10: What's up everybody, this is Jasmine Sandler ते तुसी सुन रहे हो वतनो दूर विद सुखी निजर।
0: Listen live वतनो दूर रेडियो विद सुखी निजर।

0: Listen live Vatnodo Radio with Sukhi Nijar.
1: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nandaji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nandaji
2: रोज ही लगदियां ने टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040 टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन
3: आज
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
5: पर टिलो वीडियो ते जदो मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जा tillovideo.com और कोई सेवा
6: मैं हरसिमरन सिंह साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहीयां ने पुलिस पैरामेडिक्स रीजनल रोड्स पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज वोट हरसिमरन सिंह
7: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह
8: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
9: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888
8: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
10: सुनो जी भूख लगी आ पिज्जा डिपो ले आया 4 नवे देसी फ्लेवर्स चटपटा अचारी मक्खन वर्गा मखनी तड़के वाला हाका ते अग लौंदा शेजवान कोई भी नवा फ्लेवर लो लार्ज मिलेगा मीडियम दी कीमत ते कोड वर्तो 9711 लिमिटेड टाइम ओनली सिर्फ अक्टूबर 30th तक पिज्जा डिपो स्वाद नवा प्यार पुराना
11: ताजिया सब्जियां फ्रेश फल फ्रूट वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तोहाडा मनपसंद सामान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते क्योंकि तोहाडे अपने शहर विच आ गया अनाजमा रोज दी ग्रोसरी होवे चावल दाला आटा देसी घ्यो मसाले टी स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी सामान सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ फ्रेशनेस वैरायटी क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाजमा एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते 6141 मेफील्ड रोड यूनिट

0: हिल स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट दुशहरे पर दे रहे हैं बाय वन गेट वन फ्रेश देसी घी की जलेबी स्पेशल केटरिंग ऑफर एट 10.99 पर पर्सन स्वीट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 6.99 पर माउंट सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस गार्डन रूप ट्रेल फेंडर वे फाइनेंशियल ड्राइव इन ब्रैम्पटन
1: कैनेडा डे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
2: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला
3: Solution to promote your business. Desh Pardesh, Prime Time Radio and TV. Tohade Angsang, 24 ghante satto din. Hun tak Desh Pardesh Prime Time Radio hazara hi business di grand opening live on location nal karwa chukya hai. Te karwa riya hai. Impossible is nothing. Tusi bhi apne business vich vadha karan waste Desh Pardesh Radio da live on location Friday Saturday karwao. For bookings call Tejinder Sidhu at 416-725-2551 416-725-2551
4: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार
5: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
4: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
5: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते
6: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
5: 416-509-1509
6: और विजिट

0: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: करेगा।
1: सिंपली इंडियन ब्रिंग्स यू ऑल सिंपली डिलीशियस डील्स। बाय वन गेट वन फ्री एवरी डे सवेरे 10 से शाम 7 बजे तक ऑन डाइन इन एंड टेक आउट। मजा लवो संडे नो पराठा प्लेट, मंडे मनपसंद कुलचा प्लेट, ट्यूजडे चना भटूरा, वेंसडे लाजवाब वेज थाली, थर्सडे यमी हाका थाली, फ्राइडे मजा लवो साग मक्की की रोटी दा। ए यमी डील्स सिंपली इंडियन दी सारिया ही लोकेशन से। डाइनिंग टेक आउट एंड केटरिंग ऑल्सो अवेलेबल। कॉल एट 9057948111। सिंपली डिलीशियस।

0: सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015।
1: कनाडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते।
1: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नू कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381।
4: दशहरे

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलने लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस दे ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 एंड 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड फॉर बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।